0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस?
1: जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
0: स्मॉल
2: स्मॉल
3: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: सजेस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल
2: वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
6: Maddie, I need to open a savings account.
2: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khollo.
6: Small bank?
2: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
6: Okay.
4: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: यार लोन भूल गया मैरी.
4: जस्ट अ गुड बैंक ना.
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
6: व्हाट इफ पैकमैन वाजंट ऑन अ स्क्रीन एनीमोर बट रनिंग अराउंड द रूम विद यू? दैट इज द आईडिया बिहाइंड अ न्यू गेमिंग वेन्यू इन लंदन, where classic arcade games are being turned into physical immersive experiences. At Arcade Arena, players can run through a giant Pac-Man maze, race electric carts on a projected track, and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players can take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: Yaar, loan bhool gaya. Maddie?

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
3: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
4: Yaar, loan bhool gaya. Mary? Suggest a good bank, na?
2: Ujjivan Small Finance Bank.
4: Small Finance Bank?
2: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
5: There's nothing small about it.
6: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस?
1: जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन.
0: स्मॉल
2: स्मॉल.
3: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
4: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
5: यार लोन भूल गया मैडी.
6: जस्ट अ गुड बैंक ना.
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
7: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

जहाँ हिन्दुस्तानी जान देने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं।

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एच करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: Yaar, loan bhool gaya. Maddy, suggest a good bank na.
1: Ujjivan Small Finance Bank.
3: Small Finance Bank?
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
4: There's nothing small about it.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल. अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances, power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
3: Yeah.

0: हुए माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट और यंग प्रोफेशनल्स एग्रीमेंट से भारत के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स और युवाओं के लिए स्विट्जरलैंड में कई नए अवसर खुलेंगे.
1: With the signing of the agreements, New Delhi has sent out its message that it wants a strong partnership that would yield results in the field of trade, investment, technology and jobs. Another move during the signing process was to expand market access. Prime Minister Modi said that the Indian products and services are set to gain greater access to the Swiss market, while India is looking to attract investment of the Swiss in the field of biotechnology, life sciences, banking, insurance, food processing and sustainability.
0: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे. इन पहलों से हम साथ मिलकर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स और रिलायबल सॉल्यूशंस विकसित करेंगे.
1: Military exchanges and defense production are the other sectors where both the sides are looking to expand their ties while agreeing to deepen cooperation in nuclear energy. In the joint statement, Prime Minister Modi said India hosted the AI summit early this year, while Switzerland will carry the baton with the Geneva AI summit next year.
0: इस वर्ष फरवरी में भारत ने विश्व की सबसे बड़ी AI समिट का आयोजन किया. अगले वर्ष स्विट्जरलैंड जिनेवा AI समिट के माध्यम से इस यात्रा को आगे बढ़ाएगा. जिनेवा AI समिट की सफलता के लिए मैं स्विट्जरलैंड को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर AI को रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और ह्यूमन सेंट्रिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे.
1: And then came a distinct, rather a delicious touch when it comes to diplomacy. Prime Minister Modi gifted the President 3 award-winning Indian cheeses, Gulmarg, Konark and Eur, which showcased India's emerging cheese-making tradition. He also presented a hand-carved Kashmiri walnut wood panel celebrating Kashmir's centuries-old craftsmanship. The next wave of global wealth is being led by rapidly maturing markets. A report by Knight Frank predicts that Indonesia will have the fastest growth of population worth $30 million or more. Take a look at this report to find out more. We're leaving you with this. Thanks for watching.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग.
1: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग.
2: ब्रांच नेटवर्क बिग.

0: अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
1: इन वेस्ट एशिया एवरी मूव शिफ्ट्स द वर्ल्ड्स बैलेंस. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
2: The architecture of war is changing. Geography is no longer a shield. The battlefield now stretches from sea to space. Meet the veterans, industry stalwarts, and innovators.
3: Maddie, I need to open a savings account.
0: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
3: स्मॉल बैंक?
0: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RDF. There's nothing small about them.
3: Okay.
0: उज्जीवन, nothing small about us.

0: माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट और यंग प्रोफेशनल्स एग्रीमेंट से भारत के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स और युवाओं के लिए स्विट्जरलैंड में कई नए अवसर खुलेंगे।
1: With the signing of the agreements, New Delhi has sent out its message that it wants a strong partnership that would yield results in the field of trade, investment, technology and jobs. Another move during the signing process was to expand market access. Prime Minister Modi said that the Indian products and services are set to gain greater access to the Swiss market, while India is looking to attract investment of the Swiss in the field of biotechnology, life sciences, banking, insurance, food processing and sustainability.
0: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे। इन पहलों से हम साथ मिलकर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स और रिलायबल सॉल्यूशंस विकसित करेंगे।
1: Military exchanges and defense production are the other sectors where both the sides are looking to expand their ties while agreeing to deepen cooperation in nuclear energy. In the joint statement, Prime Minister Modi said India hosted the AI summit early this year, while Switzerland will carry the baton with the Geneva AI summit next year.
0: इस वर्ष फरवरी में भारत ने विश्व की सबसे बड़ी AI समिट का आयोजन किया। अगले वर्ष स्विट्जरलैंड जिनेवा AI समिट के माध्यम से इस यात्रा को आगे बढ़ाएगा। जिनेवा AI समिट की सफलता के लिए मैं स्विट्जरलैंड को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर AI को रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और ह्यूमन सेंट्रिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।
1: And then came a distinct, rather a delicious touch when it comes to diplomacy. Prime Minister Modi gifted the President 3 award-winning Indian cheeses, Gulmarg, Konark and Eur, which showcased India's emerging cheese-making tradition. He also presented a hand-carved Kashmiri walnut wood panel celebrating Kashmir's centuries-old craftsmanship. The next wave of global wealth is being led by rapidly maturing markets. A report by Knight Frank predicts that Indonesia will have the fastest growth of population worth $30 million or more. Take a look at this report to find out more. We're leaving you with this. Thanks for watching.